ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और

लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय

अर्जुन जो है वो भगवान से यही बात कर रहे हैं कि मन इतना व्याकुल इतना चंचल है तो इसका क्या किया जाए। और ये श्लोक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये छठे अध्याय का 34वां श्लोक है। चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़म तस्यम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। के अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मन इतना चंचल है, इतना विचलित करने वाला है, इतना बलवान है, हठीला है कि मुझे इसे वश में करना हवा को रोकने से भी ज्यादा कठिन लगता है। यानी अर्जुन ऐसे थे जो हवा को रोक सकते थे लेकिन फिर भी उन्हें लगता

तो क्या किया जाए कि हम मूड के हिसाब से चलना बंद कर दें, हम वो करें जो सही है, तब शायद ऐसा होगा कि हम अपने जीवन में डगमगाएंगे नहीं। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, या क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा? क्या उन्होंने ये कहा कि ठीक है तुम आराम कर लो, कल से शुरू कर देंगे? क्या उन्होंने ये कहा कि ठीक है जैसा तुम सोच रहे हो वही सही है, इसीलिए ये युद्ध जो है इसे भूल जाओ? आखिर क्या कहा भगवान ने अर्जुन से जिससे कि हमें भी ये

जी हाँ, तो बात हो रही थी हमारे मन की, और मन हमें बार बार यही कहता है, और आजकल हम हर जगह सुनते भी हैं कि जो अच्छा लगता है वही करो। लेकिन आप ही सोचिए कि जो अच्छा लगता है वही करते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर अनुशासन कैसे आएगा, और अनुशासन नहीं होगा तो जो भी हमने सोचा है, जो भी हम करना चाहते हैं वो करेंगे कैसे। अगर आप किसी भी महान प्रतिभा के बारे में पढ़ें या किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में जाने तो आप देखेंगे कि वो सफल इसीलिए हो पाए क्योंकि उनमें अनुशासन था। और जब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की या इस समय की, तो ये भी तो अनुशासन ही सिखा रहा होता है कि आप अपने मूड के हिसाब से ना चलें। अगर सुबह उठने का एक समय नियत है

अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की

हम अगर ये सोच लेते हैं कि आज हमें ये काम नहीं करना है, तो हमारा काम सिर्फ हमारा नहीं होता, उससे बहुत सारे और लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए जो भी फैसला लें सुबह सुबह, वो सिर्फ आपके दिन की दिशा नहीं तय कर रहा है, ये समझ कर लें वो बाकी सारे लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। वैसे बात जब सूर्य देवता की चली है, तो आज आपको बता दें कि तापमान लगभग 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बादल जो है वो आते जाते रहेंगे, इसीलिए हल्की बारिश भी हो सकती है, तो छाता अपने साथ रखें घर से निकलते समय। और बात करें सूर्योदय की, तो सुबह आ गए थे जनाब 5:41 के आसपास, हो जाएंगे 7:13 के आसपास। और एक संदेश जो हर दिन हमें याद रखना चाहिए सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ, वो ये कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्य को तो फिर भी आना ही होता है। इसीलिए कभी कभी परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भी जाती ही है और हमें रोशनी देकर ही जाती है।

बात हो रही थी और हम आपसे कह रहे थे कि सुबह अगर हमने 5 मिनट और सोने का फैसला ले लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए सुबह का फैसला, सुबह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर सुबह आप जल्दी उठ गए तो आप अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपको हर रोज याद दिलाते हैं कि नियमित रूप से योगासन करना बहुत ज़रूरी है, नियमित रूप से यानी हर रोज़। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रोगों से बच सकते हैं, यानी

के ऊपर बातें हैं, लेकिन मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ती है। इसलिए बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो हर रोज योग करें, उससे उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी बढ़ेगी और फोकस भी बढ़ेगा। तो जब तक हम नहीं करेंगे बच्चे कैसे करेंगे। इसलिए हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट आपको योग को देना चाहिए। इसलिए और ये भी कहा जाता है कि रोज करें जो योग तो पास ना आए कोई रोग। तो अलग अलग योग हम आपको बताते हैं, सूर्य नमस्कार के बारे में, ताड़ासन के बारे में, या बहुत सारे और भी जो योग हैं उनके बारे में। तो जो भी योग आप कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली कीजिए, यानी हर रोज कीजिए, और फिर आप जब रिजल्ट्स देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे इतने थोड़े से समय में इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतने अच्छा जो परिणाम है।

जी हाँ, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और अब चलते चलते एक छोटी सी बात, आज एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि शाम तक मुझे अपने दिन पर गर्व हो कि हाँ, मैंने अपना दिन बहुत अच्छी तरह से बिताया। तो बस ये छोटी सी बात आपके दिन को खुशनुमा बना देगी। फिलहाल

पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।

0: सुविधा और सुरक्षा के लिए एक विशेष व्यवस्था भी की गई है।
1: सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू रिव्यूड द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस फॉर द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन CORSIA. चेयरिंग अ हाई लेवल मीटिंग इन न्यू दिल्ली, द मिनिस्टर रिव्यूड द कंट्रीज रोड मैप फॉर SAF प्रोडक्शन, ब्लेंडिंग, कार्बन अकाउंटिंग एंड सप्लाई चेन डेवलपमेंट अहेड ऑफ द मैंडेटरी फेज ऑफ CORSIA फ्रॉम 1st of January next year.
0: जी, अब बात कर लेते हैं खेलों की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर

0: में वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित एक सप्ताह के महास्वास्थ्य शिविर से राज्यभर में लगभग 95,000 लोगों को लाभ मिला है। 22 से 28 जुलाई तक चले इस अभियान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच, रक्तदान अभियान और कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी शामिल थे।
1: एंड न्यूज फ्रॉम हैदराबाद नाउ, तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी Harshan Reddy has clarified that the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls is strictly intended to prepare an accurate voter list and has no link to government welfare schemes. Reviewing the progress with district election officers, the chief electoral officer emphasized that only 5 days remain to achieve 100% digitization of enumeration forms by the August 3 deadline. Currently, 76% of the overall digitization is complete, with rural areas reaching 90% and several assembly constituencies achieving full completion. Furthermore, election authorities were instructed

0: को साथ निभाते हैं।
1: And listeners, today is also the World Day Against Trafficking in Persons. This day is observed to protect victims and improve cross-border judicial and law enforcement cooperation. The theme for this year is Trapped Behind the Scam, which draws attention to a rapidly expanding form of human trafficking in which transnational organized crime groups exploit people to carry out industrial-scale financial fraud.
2: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात 1733 की, दुनिया का पहला फ्रीमेसन लॉज अमेरिका में आज ही के दिन स्थापित हुआ।
1: 1921, ऑन दिस डे इंसुलिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड एज अ पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट बाय द कने

0: Govind Chandra Pandey, today is his birth anniversary. A well-known thinker, historian and Sanskritist of the 20th century, Govind Chandra Pandey was an exceptional scholar of many languages like Sanskrit, Hebrew and Latin, and a famous author of many books and also a Hindi poet.
1: और श्रोताओं, आज जाने माने गायक सोनू निगम का भी जन्मदिन है। इन्होंने कन्नड़, उड़िया, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी और छत्तीसगढ़ी में भी गाने गाए हैं।
0: Yes, indeed, you mentioned a very versatile name, Farad, सोनू निगम. Today is his birthday. So many good wishes to सोनू निगम from the entire team of आज सवेरे, the great playback singer, music director, dubbing artist and actor. And I'm sure, Farath, you've brought some beautiful numbers also, picturized on Sonu Nigam.
1: जी बिल्कुल, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनू ने अपना पहला गाना दूरदर्शन के धारावाहिक तलाश के लिए गाया था. तो आइए सुन लेते हैं उसी का टाइटल सॉन्ग.

0: न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी।

0: दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और

आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान

दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर 30-47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: अलॉटमेंट हजी सूड एंड ऑरेंज वार्निंग फॉर नुआपड़ा कलाहंडी नबरंगपुर एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स फोरकास्टिंग हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल टुडे व्हाइल येलो वार्निंग्स रिमेन इन फोर्स फॉर 18 अदर डिस्ट्रिक्ट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन क्लोज्ड इन कलाहंडी नबरंगपुर एंड भद्रक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर द स्टेट गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड द लीव ऑफ ऑफिसर्स इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स टू एंश्योर अनइंटरप्टेड डिजास्टर रेस्पॉन्स प्रकाश दास फॉर आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर
1: Orange alert indicating isolated very heavy rainfall has been issued

उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रावण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के

सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकिज पहुंच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की 164 पोलिंग स्टेशनों के सभी 422 पोलिंग बूथ्स पर पुरान तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 3,79,616 वोटर्स उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। गुजरात की मांजलपुर असेंबली हलके के लिए

गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इक्तसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निजाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मसाबिका आरआई को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरआई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निजाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नजरिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तिरा स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी एमएसएमईज और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट एक से अधिक क्षमता वाले हैं, जबकि 387 पैनल 2 से 3 किलोवाट एक श्रेणी में और 103 पैनल 2 किलोवाट एक तक की क्षमता वाले हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। और देखिए ना, मौसम बदलता है और मौसम के साथ साथ हमारे त्योहार बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारी खुशियों का लेवल अलग हो जाता है और उसी के साथ साथ ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम हर मौसम को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ना जैसे शायद ही किसी और हिस्से में होता होगा दुनिया के। चलिए, आज से सावन लगा है, इसी को सेलिब्रेट करते हैं इस गाने के माध्यम से।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

के हिसाब से ना बदल दिया है, उसके मतलब जो है वो अपने हिसाब से बदल दिए हैं। जैसे कि थम्स अप जो है इमोजी का मतलब सिर्फ ओके नहीं रह गया है, बल्कि जब आप किसी बात को लेकर रूखा व्यवहार करते हैं तब भी थम्स अप का इस्तेमाल करते हैं। जुड़े हुए हाथ नमस्ते हैं या थैंक यू, या फिर सरकास्टिक वे में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फैसला भी हम अपने मन मुताबिक कर लेते हैं। तो ये है इमोजी की भाषा, आप जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा है, क्योंकि अब तो

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में

हम सब लोग ना बहुत सारे विचारों में उलझे रहते हैं, लेकिन किन विचारों में उलझे रहते हैं अब देखिए, इसका पता भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। कमाल की बात है ना, खुद हमें नहीं पता होता कि हम किन विचारों में उलझे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ज्यादातर इंसानों का दिमाग काम, कॉफी और नींद के विचारों में उलझा रहता है। हालांकि इसे चार कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें एक है देश दुनिया की चिंता करने वाले लोग, दूसरे जिनका दिमाग शारीरिक मानसिक स्थिति पर केंद्रित रहता है यानी अपने स्वास्थ्य पर, तीसरे घर के कामकाज और पैसों के हिसाब किताब

अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।

0: दुनिया भर में दो युद्ध चल रहे थे और बहुत ज्यादा अनिश्चितता और भू राजनीतिक संकट का माहौल था। पिछले वर्ष के ज्यादातर समय में अमेरिका को किए जाने वाले हमारे ज्यादातर निर्यात पर 50% टैरिफ भी लगा हुआ था। फिर भी 26 मार्च को खत्म हुए साल में हमारे निर्यात में बढ़ोतरी हुई।
1: अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में

0: विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11 करोड़ 97 लाख दर्ज की गई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 9,17,000 कम है। यह 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। वहीं जापान में रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़कर 40 लाख से ज्यादा हो गई है, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है। सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में घटती जन्म दर के कारण जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। जापान के 47 प्रांतों में सिर्फ टोक्यो में स्थानीय आबादी बढ़ी है। विदेशी नागरिकों को शामिल करने पर जापान की कुल आबादी करीब 12 करोड़ 37 लाख है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 5,63,000 कम है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण के थीम का शुभारंभ किया। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच का 10वां संस्करण 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आईएमसी 2026 में वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, दूरसंचार ऑपरेटर, नवाचार, स्टार्टअप, निवेशक, शोधकर्ता और नीति निर्माता भारत के डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को आकार देने के लिए एक साथ काम करेंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि सीमाओं के बिना विस्तार थीम वैश्विक लाभ के लिए दूरसंचार, नवाचारों, प्रौद्योगिकियों और डिजिटल समाधानों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे ले जाने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप। और ये जो गाना आपने अभी सुना, जहां प्यार मिले फिल्म से ये गाना था, राम नरेश चिक, रेखा करण, अल्पेश, रघु यादव, रचना सृष्टि, सवी यादव, इन सभी ने ये गाना सुनना चाहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का

तीन स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के सहित कुल 15 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आज से श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का यह पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात

101.3 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर शुरू हो गया है। नीतू है आपके साथ और आज तस्वीर में उस जगह की बात होगी जो दिल्ली से बहुत पास है और आपको अगर कुछ घंटों के लिए सुकून चाहिए, प्राकृतिक वातावरण चाहिए, पंछियों का साथ चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये है दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।

सुल्तानपुर कभी मानसून के पानी से बनने वाली एक प्राकृतिक झील हुआ करता था। समय के साथ ये पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया, जहां हर साल बड़ी संख्या में प्रवास

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी FM गोल्ड पर तस्वीर में आज बात हो रही है सुल्तानपुर की, और वहाँ सर्दियों की शुरुआत होते ही जो नज़ारा है ना, वो पूरी तरह से बदल जाता है। साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे दूर दराज क्षेत्रों से हजारों प्रवासी पक्षी लंबी उड़ान भरकर इस झील तक पहुँचते हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिन्हें आप ना मतलब देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बिल्कुल अलग से, बहुत ही प्यारे से, डिफरेंट लगते हैं, और उनको आप प्राकृतिक परिवेश में जब देखते हैं ना तो किसी रोमांच से कम नहीं लगता। और उन विदेशी पक्षियों के अलावा

से, बहुत ही प्यारे से डिफरेंट लगते हैं, और उनको आप प्राकृतिक परिवेश में जब देखते हैं ना तो किसी रोमांच से कम नहीं लगता। और उन विदेशी पक्षियों के अलावा आपको देशी पक्षी भी दिख जाएंगे, मोर, किंगफिशर, नीलकंठ, बया और बहुत सारे ऐसे पक्षी। अब तक यहाँ पर 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जो कि इस उद्यान की जैव विविधता का प्रमाण है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, और ये है तस्वीर। मैं हूँ नीतू।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अगर आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि सर्दी के मौसम में, या थोड़ा जब मौसम हल्का अच्छा हो जाए, इतनी गर्मी में के मौसम में ना जाएं, क्योंकि गर्मियों में वैसे तो खुला होता है लेकिन पक्षी जो हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, ख़ासतौर पर प्रवासी पक्षियों की। इसलिए जाने का जो सही समय है वो अक्टूबर से मार्च के बीच है। आप अप्रैल मई तक भी जा सकते हैं, उस दौरान भी मौसम ठीक ठाक ही रहता है और इसी दौरान प्रवासी पक्षियों की जो संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। सूर्योदय के बाद का समय पक्षियों की गतिविधियां देखने और फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा होता है, तो आप उस मौसम में कभी भी जा सकते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय वहां जाकर पंछियों का साथ पाइए और उनकी आवाज़ें सुनिए।

आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने में। हाँ, इतना याद रखिएगा कि अपनी यात्रा के लिए दूरबीन, टोपी और पानी की बोतल जरूर साथ में रखें, ताकि बर्ड्स और उनकी एक्टिविटीज को आप ठीक से देख पाएं और अपने कैमरा में कैप्चर भी कर पाएं।

0: टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश

गुप्ता, कृष्णा मूर्ति और रूप कुमार राठौर की। श्रोताओं, अब बात होगी दिन विशेष की। हर वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष का जो थीम है वो है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, यानी धोखाधड़ी के जाल में फंसे लोग। यह हमें सतर्क रहने और दूसरों को जागरूक करने का संदेश देता है। हमें याद रखना होगा कि झूठे नौकरी के वादे, विदेश भेजने के लालच या ऑनलाइन ठगी के जाल में हम ना फंसें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। तो आज आइए हम सब मिलकर मानव तस्करी मुक्त, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प लें। ये दिन तो विशेष है ही है, इसके साथ

2011 में आधिकारिक मान्यता दी। श्रोताओं, इसका उद्देश्य विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच मित्रता, आपसी सम्मान और शांति को बढ़ावा देना है। इस दिन का संदेश केवल व्यक्तिगत दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन वैश्विक भाईचारे और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज इस अवसर पर हम अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें और प्रेम, विश्वास और सद्भाव के इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का

रक्षण अभियान है। श्रोताओं, ये अभियान हमें संदेश देता है कि जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो वर्षा जल को संचित करें। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का जो संग्रह है वो बढ़ाना है और साथ ही साथ भूजल स्तर को सुधारना भी है। ये अभियान तालाब, कुएं, झील और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण की बात करता है और उनको पुनः जीवित करने की भी बात करता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। श्रोताओं, हर व्यक्ति और समुदाय को जो है वर्षा जल बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा भी और हम सब जानते भी हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। सोचिए अगर पानी हमें पीने को ना मिले तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। तो इसे बचाने की जिम्मेदारी

को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी या गिरवी के पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ऋण और ब्याज पर छूट प्रदान करती है। श्रोताओं, योजना की मुख्य विशेषता यह है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना किसी कोलैटरल या गारंटर के शिक्षा ऋण मिलता है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट दी जाती है और 7.5 लाख तक के ऋण पर सरकार बैंकों को 75% क्रेडिट गारंटी देती है। आवेदन के लिए छात्र पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये लाभ भारत के लगभग 860 उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो अगर आपका सपना है अपने बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में भेजने का, तो इस योजना से आप लाभान्वित हो सकते हैं और अपने बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं।

दालें, दूध और दूध के जो प्रोडक्ट हैं, जो दुग्ध उत्पाद हैं, उन्हें जरूर शामिल करें। साथ ही साथ फल, मेवे, नियमित व्यायाम, पर्याप्त धूप और अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की असली नींव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी सप्लीमेंट का सेवन स्वयं से शुरू ना करें। हम बार बार यही कहेंगे कि चिकित्सक से परामर्श लें और तभी इनकी की जो है शुरू करें, और सलाह तो लें ही, साथ ही साथ अगर चिकित्सक ये कहता है कि आपको कुछ जांच करवाने की ज़रूरत है तो जांच भी करवा लें, ताकि आपका जो जांच करवाने से आपके जो ब्लड के पैरामीटर हैं वो पता चल जाए, और उसी के अनुसार अपनी डाइट में आप अपने भोजन के साथ तो सुधार करें ही करें और अपनी डाइट में इन सप्लीमेंट्स को शामिल करें, तो स्वस्थ महिला जो है वो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि महिलाएं अपना ध्यान रखें, और देखिए महिलाएं तो अपना ध्यान रखेंगी ही रखेंगी, अगर हमारे साथ के लोग, हमारे अपने लोग भी महिलाओं का ध्यान रखें तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा।

नामांकन की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2026 यानी कि कल तक है। तो अगर आपका बच्चा या आपके आसपास किसी ऐसे कोई बच्चा है जिसने कोई बहुत ही अच्छा काम करा और आपको लगता है कि वो भी इस पुरस्कार का हकदार हो सकता है, तो आपके पास आज का और कल का समय है, आप उसको वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं।

0: दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेह होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 1:11 हुए हैं और इस वक्त तय करेंगे कलाकार बेमिसाल का ये सफर। आज जिस शख्सियत के बात

यादगार बना दिया। ऐसी आवाज जिसे सुनकर जी भी नहीं भरता और शब्द भी कम पड़ते हैं तारीफ के लिए। हिंदी के अलावा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी उन्होंने गीत गाए, बहुत से इंडी पॉप एल्बम बनाए। सिंगिंग के साथ साथ कई हिंदी फिल्में भी उन्होंने की। उन्हें गायकी का शौक कैसे हुआ इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उनके लिए यही कहेंगे कि भाई आपकी आवाज है तो किसी और का भला इंतजार तो बनता ही नहीं। इस सिर्फ यहाँ पर इस सफर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आपकी बातें आपकी आवाज।

हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में सोनू निगम का जन्म हुआ था 30 जुलाई यानी कि आज ही के दिन, और साल रहा 1973। इनके पिता अगम कुमार निगम और माता शोभा निगम। उनके पिता एक स्टेज कलाकार रहे, उनके साथ ही सोनू निगम भी स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लगे। लगभग 4 साल की उम्र से ही वो अनेक फंक्शंस में पिता के साथ गाते रहे। बाद में गायकी को एक प्रोफेशन बनाने के लिए इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और इस सपने को देखते हुए वो पिता के साथ मुंबई आ पहुंचे, और आगे का सफर कैसा रहा इस पर भी बातें करेंगे। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं मैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

इन भाषाओं में सोनू निगम ने अनेक गाने गाए हैं। गायकी के साथ साथ एक्टिंग मॉडलिंग के भी उस्ताद रहे हैं सोनू निगम। तो ऐसे हैं हरफन मौला गायक सोनू निगम। और चलते चलते चलिए उन्हीं का गाया अग्निपथ फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: बिल को लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी।
1: फॉर मूविंग द मोशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 एज पास्ड बाय द लोकसभा टुडे इन राज्यसभा बाय ग्रांट ऑफ वाइवर अंडर रूल 123 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा अकॉर्डिंगली ए सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर टुडे हैज बीन इश्यूड फॉर टेकिंग अप दिस बिल फॉर कंसिडरेशन पासिंग।
0: इस बिल में कसूरवार पाए गए अफराद को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनके अमलाक को जब्त किए जाने जैसी सख्त सजा की गुंजाइश रखी गई है। मुकदमात को तेजी से निपटाए जाने के लिए इस बिल में ये कहा गया है कि रियासती सरकारों और

फिर की जा रही हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मांजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया में वोटिंग हो रही है। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक पटना में बांकीपुर असेंबली हलके में सुबह 11 बजे तक 11.50% वोटिंग दर्ज की गई। गुजरात के मांजलपुर हलके में वोटिंग का फीसद

कानून बनाना है। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान आरएएफ की जानिब से इस्तेमाल गोली बारूद की तफसीलात को महफूज रखने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग जारी है। और कनाडा में मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

अलर्ट फॉर हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल फॉर महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ एंड वेस्ट मध्य प्रदेश. एंड इंडियन मेंस टीम स्टॉर्म इनटू सेमीफाइनल्स ऑफ स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप्स इन कनाडा. एंड विद दैट वी एंड द मिडडे न्यूज़.

0: आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

0: पुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भिखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

0: समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही

0: आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
4: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र

0: कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन

हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक

को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: से कॉल कर रहे हैं तो 011 एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
1: जैसा कि नीरा ने बता ही दिया, आज का विषय है कृषि मंत्रालय की किसान उपयोगी विभिन्न योजनाएं, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर वाई आर मीना, जो कि पूर्व अपर आयुक्त विस्तार कृषि मंत्रालय भारत सरकार से हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो योजनाओं के बारे में ही है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लाभदायक हैं।
2: जी बिल्कुल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

0: हॉर्टिकल्चर के जितने भी सेक्टर हैं वो सब इस योजना के तहत कवर होते हैं, चाहे कोई फूलों की खेती करें, सब्जियों की खेती करें, फलों की खेती करें जी. या पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, इस तरीके की जो आजकल प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है वो अपनाएं, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, कटाई उपरांत आप उसकी तुड़ाई, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, ये सब चीजें उसमें कवर होती हैं. फूलों की खेती
1: जी.
0: तो ये बहुत बड़ा एक वो है, हॉर्टिकल्चर की सारी चीजें इसमें हैं और इसीलिए इसका समन्वित बागवानी विकास योजना नाम रखा गया है. इसमें किसानों को एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रशिक्षण, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें नई नई चीजें आप करना चाहेंगे तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो पूरी स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग इनके जो सेंटर्स हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट के, बागवानी के विभाग हैं या कृषि विज्ञान केंद्रों की बड़ी फेहरिस्त है
1: जी.
0: कई

0: या भूल गया कुछ, तो उसको फिर टेक्स्ट मैसेज भी आता है उसी भाषा में,
1: उसी भाषा में।
0: पहले फोन पर सलाह दी जाएगी, उसके बाद में उसको मैसेज चला जाएगा उसका, जिससे कोई भूल चूक नहीं हो,
2: यानी कि अपनी ही भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में या लोकल स्थान
0: जी जी उसके पास। तो ये सेवा निरंतर है और इसको कहीं से भी किसान मोबाइल से, लैंडलाइन से, खेत से, घर से, कहीं से भी कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, हम और योजनाओं के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर, जैसे कि आपने पहले ही बताया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है
0: जी।
2: अब इस योजना में बहुत सारे किसानों को बहुत सारा लाभ मिल रहा है, लेकिन जो नए किसान जुड़ना चाहते हैं वो, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि अगर सरकार से कुछ इस तरह का अनुदान मिल रहा है तो वो लें, तो उसके लिए क्या पात्रता होती है, क्या क्वालिफिकेशन है कि हम उसको अप्लाई कर पाए?
0: जी बिल्कुल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत चर्चित है, पॉपुलर है और किसानों में काफी जागरूकता है इसके बारे में। इसके लिए जो पात्र किसान है, पात्र में यह है कि जमीन की पहले सीलिंग रखी गई थी वो अब नहीं है।
1: अच्छा।
0: कोई ऐसा किसान नहीं हो जो इनकम टैक्स पे करता हो, मान लो लास्ट ईयर किया है, मतलब अच्छी इनकम वाला, तो वो इसका पात्र नहीं होगा। जो किसान खेती पर ही निर्भर है वो इसके पात्र होते हैं। और दूसरा, वो कॉमन सर्विस सेंटर,

0: तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सब ही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।

0: सरकारी अफसर रहे, रिटायर हो गए तो वो पात्र नहीं होंगे। और एक खास बात के जो इसका लाभ लेगा उसके नाम से जमीन होनी चाहिए और तभी वो उसका पात्र हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई गलती है। आप उसकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो स्पेसिफिक रीजन वो बता देंगे क्या कारण है,
1: किस वजह से उन्हें हाँ, नहीं मिल पा रही।
0: कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं करता है, इसका बाकायदा मैकेनिज्म बना हुआ है और वो सिस्टम में आने के बाद चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती।
1: तो मतलब ये कॉमन सर्विस सेंटर पर जाए, वहां से उनको इस समस्या का समाधान मिल सकता है।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: या कारण पता लग सकता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम अपने संदेश में भी सुन रहे थे फसल बीमा योजना के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
0: फसल बीमा योजना, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है ये बहुत बड़ा देश है और इसमें समय समय पर किसानों की फसल चौपट हो जाती है, कभी ओलावृष्टि से, कभी ज्यादा बरसात से, कभी सूखे की

0: राज्यों का वो रहता है और वही फिर आगे कोऑर्डिनेट करते हैं अधिकारी
1: जी।
0: उसमें सुपरवाइजर से लेकर डबल एओ, कृषि अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर सब होते हैं। ये पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है तो उन्हीं को कंप्लेंट करनी होती है और उनके नंबर भी इनके पास होते हैं जो नोडल ऑफिसर हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क किया जा सकता है और हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर भी फोन करके सलाह ली जा सकती है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए मैकेनिज्म है, मशीनरी।

0: पूरी मशीनरी राज्यों की केंद्र की लगी हुई थी, तो ये ख्याल रखा गया था कि हमारी जो मिट्टी है जिससे हम फसल लेते हैं, उपजाते हैं फसल, उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो पैदावार बढ़िया होगी
1: जी,
0: और हमारा खर्चा भी कम होगा। तो इसलिए, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले काफी सालों से कि किसान अनावश्यक रूप से, उनको उतना ज्ञान नहीं है, पता भी नहीं मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, डीएपी यूरिया ये सब उपलब्ध हुआ नहीं, खरीद के लोन लेके कर्जा लेके भी खेतों में छिटक दिया
1: जी,
0: जबकि उसकी जरूरत नहीं होती कई बार। तो सॉयल हेल्थ कार्ड में जो पोषक तत्व की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है उन्हीं को डालना है, तो एक तो किसान की जेब पर खर्चा कम होगा और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। अगर जरूरत से ज्यादा खाद और उर्वरक डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य खराब होगा, मिट्टी में जो हमारे मित्र जीव हैं वो भी नष्ट होंगे और उसकी जो उपजाऊ की क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सॉयल हेल्थ कार्ड के बेस पर उर्वरकों का उपयोग किया जाए, ये सलाह किसानों को दी गई और हर एक किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए कि वो विशेषज्ञों को दिखा के आवश्यकता अनुसार खाद और उर्वरकों का उपयोग करें जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और किसान की जेब पर भी खर्चा ना आए।
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए

0: राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय तय किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
1: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। पहले स्थगन के बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी

आप सबके बिना भी जिया जाए ना, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। मनभावन प्रोग्राम, जो मन को भाता है वही जुबां पर आता है। आपकी जुबां पर जो गीत आए हैं वो हमने धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए। मोताला महाराष्ट्र से विजय सोलरकर, रत्नमाला जी हैं इनके साथ।

0: रंग की चूड़ी लेनी है, तब तक मैं बस यूं गई और यूं आई।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आई

0: आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर

0: मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

रहे हैं या फिर कहीं भी आप कुछ भी करते हुए हमें सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप वक्त निकालेंगे तो आप हमें fmgoldaird@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हम आपका जो मनपसंद गीत है वो आपको या आपके अपने तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल जी हैं, सचिन खोरवाल हैं, अमन खोरवाल हैं, दीपांशु

ये कहाँ से भेजा है, नाम तो मैं पढ़ ही लूँ, मालवा रेडियो श्रोता संघ है ये। जगदीश धाकड़ साहब हैं और श्रीमती रंजू बाई धाकड़ हैं, इनके साथ युवराज सिंह हैं और शिवांगी भी हैं, यानी पूरा का पूरा परिवार है। उन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है और ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ये किसे अच्छा लग रहा है, अल्तमश समीना और इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी गुजारिश करूँ आपसे, वैसे ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी नहीं, आप ना अपने नाम, जैसे दिल की बात जो है वो तो आप चलिए लाइन में लिखते हैं, नाम अगर आप एक के नीचे एक लिखेंगे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उमेश कुमार जी नमस्कार, आपने हमें ये खैला से भेजा है, उमेश कुमार है, इनके साथ दिनेश कुमार है, अनोज कुमार है और सोनित कुमार है। जब मुझे ऐसा एहसास होने लगता है ना कि बहुत ज़्यादा नाम ले लिए हैं, तब गीत की याद आ जाती है। वैसे गीत बिल्कुल तैयार है जी, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी हैं, निगत परवीन हैं, शहनवाज अब्बासी हैं, सरफराज हैं इनके साथ, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं और पूरा का पूरा हमारा जो अब्बासी परिवार है, इन्होंने हमें ये लिखकर भेजा है। डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख हैं ये, इन्होंने सुधाकर राजे भी हैं, ये इन्होंने कहाँ से भेजा है, मराठवाड़ा से।

जो फरमाइश है वो मैं पूरी कर पाऊँ। और मेरे कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, इन्होंने भी अपना संदेशा भेजा है, बहुत शुक्रिया। ये एक नाम मैं पहले पढ़ चुकी थी, उनका उनकी पसंद का गीत है, नाम मैंने आपका पहले ले लिया, अभी मुझे याद नहीं है, शुरू में ही ले लिया था लेकिन गीत मैंने निकाल के रखा था। ये लीजिए सुनिए, ये तो हमें भी बड़ा पसंद है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है।

हमारी नजर जाती है, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है ना, तो ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी से हम नाम पढ़ दें। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा और ईशान हैं और पूजा परिहार हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेशा भेजने के लिए। एक बार पुनः आप सुन लें कि FM गोलिया या delhi@gmail.com है जी, इस पर आपको हमें अपना संदेशा भेजना है और यहाँ पे

तो आप हैं एफएम गोल्ड 100.1 के साथ, और हमारे साथ तो आप हैं ही गुजरात से अजीत भवसार और प्रमिला भवसार का ये संदेश आया। बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर मैं खो गई हूँ आपके पैराग्राफ में, और वही गाना देखने की कोशिश कर रही हूँ कि नाम हेमलता हैं, साथ में हिना हैं, हर्षित हैं और खुशी गोस्वामी हैं, लालगिरी गोस्वामी हैं ये।

बहुत सारे लोग सुनते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि तहजीब की लौ से बुझते चिराग का धुआं भी महकदार हो जाता है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए। बहरहाल, आइए अब आखिरी गीत आज के प्रोग्राम का, ये भी 60 के दशक का गीत है, बहुत सरल, बहुत प्यारा सा गाना है, लीजिए सुनिए।

व्यक्त करते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा की वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 20%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 48% मतदान दर्ज हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता

स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 में। साथियों, शाम 6:10 पर आप कार्यक्रम सुन सकते हैं विश्लेषण। 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे और 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। 7:00 एक बार फिर हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। 7:25 पर सांझ ढले कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। आपके साथ रहेंगी विभा लक्ष्मी, कुछ गीत और कुछ जानकारियां। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार होंगे और 8:00 संसद समीक्षा आप हिंदी में सुन सकते हैं। 8:15 पर पार्लियामेंट रिव्यू अंग्रेजी में आप सुन सकते हैं।

0: prescribed eligibility conditions. The detailed advertisement, including pay scale, qualification, experience, application format, and terms and condition, is available on the official IIMC website. Then the last date for submission of applications is 11th August 2026. For details, kindly do refer to the website at www.iimc.gov.in. I repeat, it is www.iimc.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गांधीनगर

अतिरिक्त सचिव के लिए स्वीकार्य वेतन या रुपए 5 लाख प्रति माह के समेकित वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प होगा। पद का विवरण और पात्रता शर्तें आर्थिक कार्य विभाग के अधीन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। वेबसाइट का पता है dea.gov.in। निर्धारित प्रारूप में पात्र उम्मीदवारों के आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उचित माध्यम से आर्थिक

gov.in। निर्धारित प्रारूप में पात्र उम्मीदवारों के आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उचित माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय कमरा संख्या 10042 कर्तव्य भवन 1 नई दिल्ली 110001 के पास 14 अगस्त 2026 से पहले पहुंच जानी चाहिए। अपूर्ण आवेदन और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान लेह लद्दाख आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2, चिकित्सा विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा, रोग विज्ञानी, विकिरण विज्ञानी, अस्पताल अधीक्षक, प्रशासनिक एवं लेखाधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक और निजी सचिव। निर्धारित प्रारूप में पूरी तरह से भरे हुए आवेदन, व्यावसायिक योग्यता, आयु, जाति और अनुभव प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ

चिकित्सा अधिकारी ई क्लिनिशियन साइंटिस्ट सेल्युलर थेरेपी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा भौतिक विज्ञानी वैज्ञानिक अधिकारी डी वैज्ञानिक सहायक बी वैज्ञानिक सहायक बी हिमेटोपैथोलॉजी वैज्ञानिक सहायक बी पैथोलॉजी वैज्ञानिक सहायक बी रेडियो डायग्नोसिस। आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण 13 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है जो 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 7 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा स्मारक केंद्र की वेबसाइट।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अभी कुछ ही देर पहले आपने और हमने मिलकर सुना रोज़गार।

0: फ्रेंड्स एंड इट्स फ्रेंडशिप विच मेक्स गुड टाइम्स बेटर एंड हार्ड टाइम्स ईजियर.
1: जी
0: ट्रू फ्रेंड्स शेयर लव्स, बिल्ड स्वीट मेमोरीज एंड स्टे बाय आवर साइड थ्रू एवरी सीजन. ट्रू फ्रेंड्स आर नेवर अपार्ट, मे बी इन डिस्टेंस बट नेवर इन हार्ट. यस, इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप टुडे, सो जस्ट गो टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स और कॉल हिम ओवर और सिट टुगेदर विद अ कोजी कप ऑफ टी और कॉफी इन योर हैंड्स एंड प्ले टू योर फेवरेट म्यूजिक और सिंपली पुट ऑन द रेडियो एंड एंजॉय द मोमेंट राइट नाउ विद अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ परिक्रमा अलॉन्ग विद अनुजा एंड सरफिरोजी.
1: जी अनुजा, और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइंस के साथ.
0: जी हाँ,
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा. विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना.
0: प्रोसीडिंग्स इन लोकसभा डिस्रप्टेड अमिड ऑपोजिशन रकस ओवर वेरियस इश्यूज.
1: सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश.
0: पोलिंग अंडर वे फॉर बाय इलेक्शंस इन 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश.
1: महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट.
0: एंड इंडियन मेंस टीम स्टॉर्म इनटू सेमीफाइनल्स ऑफ स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप्स इन कनाडा. एंड सर फिरोजी, इट्स नाउ टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन.

0: अनुजा, ऐसे में पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया। देवी पार्वती ने विष को उनके शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और इस तरह उन्हें नाम मिला नीलकंठ का।
1: एंड इट इज बिलीव्ड दैट दिस डिवाइन एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस टुक प्लेस ड्यूरिंग श्रावण टू सूथ द इंटेंस हीट ऑफ द पॉइजन द गॉड्स कंटिन्यूअसली ऑफर्ड वाटर टू लॉर्ड शिव। दिस इज व्हाई इवन टुडे डिविटीज परफॉर्म जल अभिषेक, which is offering holy water to Shivlingam as a symbol of gratitude, faith and devotion.
0: और अनुजा, बड़े ही खुले मन के साथ लोग इस महीने का स्वागत करते हैं। भारत के कई हिस्सों में बरगद और नीम के पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। महिलाएं जो हैं वो गहरे हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, पारंपरिक लोक गीत गाती हैं। इसके अलावा हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे त्योहार भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। और जब बात हो रही है श्रावण के महीने की, तो देखते हैं कि झारखंड के देवघर में इसका स्वागत कैसे किया गया।
2: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: कर्ज के जाल में फंस कर बंधवा मजदूर बन जाते हैं और कई सालों तक और कभी कभी तो पूरी जिंदगी भर नहीं उससे निकल पाते.
1: दिस इज सो सैड सर फिरोजी. या दिस ईयर्स ऑब्जर्वेंस कैरीज द पावरफुल थीम ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम. द 2026 कैंपेन शाइन्स अ स्पॉटलाइट ऑन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग पीपल लर्ड बाय फेक ओवरसीज जॉब ऑफर्स ओनली टू फाइंड देमसेल्व्स इम्प्रिजन्ड इनसाइड ऑनलाइन स्कैम कंपाउंड्स.
0: बिल्कुल अनुजा, और सच्चाई इन्हें तब पता चलती है कि जिस तरह के करियर का वादा इनसे पहले किया जाता है, जॉब की लोकेशन पर पहुंचकर इनसे वो वादे तो पूरे नहीं किए जाते बल्कि इसकी बजाय इन्हें धमकी देकर इनके

0: जानकारी है।
1: सो लेट्स गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ अ कंट्री फर्स्ट, कोहिमा।
0: जी,
1: सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्रूव सैनिटेशन आर एसेंशियल फॉर हेल्थियर एंड मोर रेजिलियंट रूरल कम्युनिटीज। एंड इन नागालैंड, ज़ुन्हे बोटो डिस्ट्रिक्ट इज मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस टूवर्ड्स दीज गोल्स थ्रू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम सच एज द जल जीवन मिशन एंड द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। Our correspondent has a special report on this.
0: ज़ुन्हे बोटो डिस्ट्रिक्ट

0: आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया।
1: 20 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन।
0: हम आज मुतुलक्ष्मी रेड्डी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोट्टई रियासत में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी मुतुलक्ष्मी रेड्डी कई मामलों में आगे रही। वे देश की

संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।

में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बख्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाश अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और कई आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता

0: कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। इस गीत को सुनते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया, क्या कहते हैं आप इश्क को पढ़ने, इश्क को जानने, इश्क को समझने या फिर इश्क को जीने में फर्क क्या है? अब आप ये सोचिए और सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। घर पर जाने का वक्त हो गया है, सीमा का भी अब जाने को वक्त हो गया है। इजाज़त दीजिए मुझे गाते गुनगुना।

0: हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, रबार, बैम्बू, अगरवुड, एग्रीकल्चर एंड सेवरल अदर सनराइज सेक्टर. द कॉन्क्लेव वॉज इनॉग्रेटेड बाई चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह, हु अंडरलाइन द स्टेट्स विजन ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम थ्रू ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट.
1: Now the time is ripe for private investment to take benefit of robust infrastructure and natural resources. That is why we have organized this investment summit on a large scale with the participation by more than 45 departments and organizations of the state and central governments. I am thankful to the donor minister, Sri Sindhiaji, for gracing this business conclave. The business conclave has brought to

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष

0: फाइनल में पहुंच गए रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Janagana.

श्रोताओं, पिछले एक दशक में भारत में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में जहां उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात लगभग 23.7% था, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके

होगी। इसमें पाठ्यक्रम की अवधि और उसके बाद एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल नहीं होगी। पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक होने पर पात्र विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। वहीं 4,50,000 रुपए तक की आय वाले विद्यार्थियों के लिए पहले से संचालित केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी

0: समान अवसर और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदि वन्दे मातरं गीताय वैधानिक संरक्षण विधेयकः पारितंगतः। लोकसभायां कार्याचरणं च स्थगितम्। प्रश्नपत्र कदाचार निरोधाय संशोधन विधेयकः राज्यसभायां विचाराधीनः। दिल्ली छात्र प्रदर्शने द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षितं रक्षयितुं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशः। महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अति वृष्टिपरा रक्त संचेतना उद्घोषिता ऋतु विज्ञान विभागेन। अपि च ग्लास्गो राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य कुंत प्रक्षेपकाः

पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य केन्द्र सर्वकाराय प्रोक्तम् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे नवदिल्ल्याः जंतर मंतर स्थले विनियोजितस्य द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षिततया स्थापनीयमिति। सर्वोच्च न्यायालयेन विधि व्यवस्था पालनाय पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगे पूर्ण प्रतिबंधस्य याचनामधिकृत्य प्रश्नः उत्थापितः। न्यायालयेन आरक्षक अनुसंधान विकासाभिकरण संस्थायाः परामर्शमधिकृत्य कथितं यत् आरक्षिणः असाधारण स्थितिषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगार्थम् अधिकृताः सन्ति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य सहैव न्यायाधीशयोः जायमाल बागची वी मोहन इत्येतेषां पीठिकया दिल्ली सर्वकाराय अपि आदिष्टम् यत् विरोध प्रदर्शनेषु ये भुशुण्डिकया व्रणिताः अभवन् तेभ्यः उत्तम चिकित्सा सौविध्यं प्रदातव्यमिति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्य महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अतिवृष्टेः संभावनां प्रकटय्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेन अनेन

0: आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: पाकिस्तानाधिकृते जम्मू कश्मीरे सोमवासरे पाक सुरक्षा बलैः शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारिणां विरुध्य नृशंस कार्याचरणं पश्चात् अद्य चत्वारिंशत् जनानां निधनानन्तरम् अपि उग्र विरोध प्रदर्शनं निरन्तरं प्रवर्तते। जेएएसी

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,317 पर बंद हुआ। हालांकि विस्तृत बाजारों में

0: price, because and the whole concern about India's depleting foreign exchange reserves and the pressure on the external accounts, I think that will be really put behind us. It's really a masterstroke. The numbers we'll get, of course, by end of September. My guess is it will be upwards of $50 billion, maybe more even.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए. कंपनी के अनुसार वार्षिक आधार पर संचालन से प्राप्त समेकित राजस्व 27% बढ़कर 57,533 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. इस दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 33.6% बढ़कर 5,455 करोड़ रुपए दर्ज हुआ.
2: In more results, Bajaj Finance Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The firm's consolidated net profit increased by around 27% to 5,986 crore rupees on an annual basis. Bajaj Finance's net interest income increased by 23%.

0: पुनीत जी, हम आपको कार्यक्रम के समापन में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
1: धन्यवाद मनोज जी.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end with modest gains. Sensex rises over 250 points. Nifty settles above 24,300. Most Asian stock market indices close in the negative zone. And global crude oil prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
1: I'll be taking note of it।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं।

0: लाकर अपने बाहरी व्यापार को लचीला बनाए रखा है और 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान हमने रिकॉर्ड निर्यात किया जो 863.1 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम कैसे अपने निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को निरंतर बढ़ाए रख सकते हैं। इस विषय पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है जाने माने विशेषज्ञ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय जी को। डॉक्टर सहाय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम यही समझना चाहेंगे कि हमारे साथ

0: उदाहरण देकर बताएं कि कहां हमारा निर्यात पहुंच रहा है और कौन सी वस्तुओं का निर्यात वहां पहुंचने लगा है जो हमारे पारंपरिक EU और अमेरिका जो दो मुख्य ठिकाने रहे हैं उनके अतिरिक्त।
1: ठीक है, जैसे हिंदी में कहा जाता है चुनौती में अवसर होते
0: जी,
1: हैं।
0: आपदा में अवसर की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं,
1: बात करते हैं और वो एकदम सही है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% की ड्यूटी लगाई तो हमारा जो मैरीन जो एक्सपोर्ट था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि इक्वाडोर जो हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 5% ड्यूटी थी, मैक्सिको जो दूसरा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 0% ड्यूटी थी, और हमारा जो मैरीन एक्सपोर्ट है उसका करीब 35% एक्सपोर्ट जो था वो US के लिए था। जब ये आया तो हम लोगों ने बहुत चिंता जताई कि ये इंडिया का मैरीन एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह

इंक्रीजिंगली प्रोक्योरमेंट कर रही हैं और एक तरह का जो सप्लाई चेन उनको चाहिए वो इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया है। एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि यूएस ने इतनी जब टैरिफ भी इंडिया पे लगाई थी 50% टैरिफ अपैरल सेक्टर में, एक्सपोर्ट नहीं प्रभावित हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण था कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया में जो उन्होंने अपनी सप्लाई चेन एस्टेब्लिश कर ली थी उसको वो बदलना नहीं चाहती थी। तो शायद अब कंपनीज का एक परमानेंट स्टेक इंडिया में आ गया है क्योंकि इंडिया को एक्सपेंशन

0: अपेक्षाकृत छोटा है, वह कैसे इस प्रमाणन को प्राप्त कर सकते हैं और पूरा लाभ अपने उत्पाद का ले सकते हैं?
1: देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मैं फल का एक एक्सपोर्ट करता हूँ यूएस में, तो उसके लिए मेरे को एक एफडीए का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक तरह से उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट 20 लाख रुपए है और मैं एक लघु उद्योग का एक एक्सपोर्टर हूँ, मेरे लिए वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस स्कीम के

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ। भाई पुराने फिल्मी गीतों की एक खूबी ये भी थी कि उनमें हल्की फुल्की नोकझोंक और शरारत भी बड़ी सादगी से पेश की जाती थी, और इसी की मिसाल है साल 1957 की सुपरहिट फिल्म तुम सा नहीं देखा का एक चुलबुला युगल गीत। ये फिल्म शमी कपूर के शुरुआती बड़े सफल पड़ावों में गिनी जाती है। संगीतकार ओपी नैयर की जोशीली धुन, मजरूह सुल्तानपुरी के रोचक बोल और आशा भोसले मोहम्मद

0: वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: के आदेश और अपने द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का हवाला दिया, जिसके अंतर्गत इस स्थल पर अधिकतम 1,000 लोगों को अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति संबंधित आयोजकों या व्यक्तियों द्वारा औपचारिक आवेदन करने पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, जो निर्धारित नियमों और शर्तों के पालन के अधीन होती है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करने या उसे न फैलाने और सही जानकारी के लिए मात्र आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर

0: विकासपुरी स्थित एक निजी विद्यालय के प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे, वित्तीय अनियमितताएं और प्रशासनिक उल्लंघन सामने आए हैं।
1: निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय बिना अग्नि सुरक्षा स्वीकृति के 43 कक्षाओं का अवैध रूप से संचालन कर रहा था। इसके अतिरिक्त परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध टिन शेड संरचनाएं निर्मित की गई थी। बिना अनुमति भूजल का दोहन किया जा रहा था। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था। अभिभावकों से मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि की जा रही थी तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं का संचालन बिना वैध मान्यता से किया जा रहा था। इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा निदेशालय को विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। विद्यालय को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया।

के पास से हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही 400 क्वार्टर शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 1 अगस्त को अपना मासिक सुविधा

राजधानी दिल्ली 6 के बीच होगा। इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीम खेलेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद या सील करने की अफवाहों को खारिज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विद्यावाहिनी साइकिल वितरण

अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा।

नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृहमंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई

विरामकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी

रोक लगाए, अन्यथा यही जेन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

न्यास की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की पैरा 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर दिलीप महादुगावित को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एथलीट की गति, दृढ़ संकल्प और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने नया खेल कीर्तिमान बनाने और अपना सीजन बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए भी श्री गावित को बधाई दी। श्री मोदी ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर मोहम्मद बासिल मोरसिंह नाकत को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोरसिंह नाकत की सफलता

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन पर दिलीप महादु गावित ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
1: मैं बचपन में पेड़ से गिर गया था, तब वो हाथ कट करना पड़ा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया पैरा वालों के लिए सपोर्ट करने के लिए। पैरालंपिक वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट भी बहुत सपोर्ट करे, हमारे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। उस सपोर्ट की वजह से आज हम देश का नाम ऊंचा कर पाए।
0: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफिकेशन राउंड

की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। ठंडे और तेज हवाओं वाले मौसम के कारण 14 में से कोई भी एथलीट 16.60 मीटर के स्वतः क्वालिफिकेशन मानक को पार नहीं कर सका। चित्राबेल ने दूसरा और तीसरा प्रयास नहीं किया। उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 17.37 मीटर है। दूसरी ओर सेल्वा प्रभु ने अपने अंतिम प्रयास में 16.26 मीटर की कूद लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई।

0: 16 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। अब उनका मुकाबला जापान के युदाई ओकिमोतो से होगा। महिला सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त उन्नति ने तानिया हेमंत को 21-19, 21-12 से, तन्वी ने इंडोनेशिया की थलिता को 21-17, 22-20 से और देविका ने इंडोनेशिया की निकांडे को 21-16, 21-15 से हराया। उन्नति और देविका क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी, जबकि तन्वी थाईलैंड की सुपिनिडा केटथोंग से खेलेंगी। वहीं एचएस प्रणय और अनमोल खराब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और बात क्रिकेट की। भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उनके क्रिकेट करियर पर नजर डाल रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा।
2: टुडे आई फील द टाइमिंग इज राइट फॉर मी टू मूव ऑन एंड अनाउंस माय रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ऑल फॉर्मेट।

0: मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
2: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता

बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम

0: अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रूपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि

Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के

0: में बदलाव आया है।
1: जो एक सेगमेंट जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे, अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चलें तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है।
0: जी।

0: उपकरणों के निर्माण पर है और डिस्प्ले की बात करते हैं हम, फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
1: देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है, अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं।
0: जी
1: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, तेजस नेटवर्क, HFCL, जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कॉम्पिटिटिव है। तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस, क्योंकि जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इसमें काफी क्षमता है और सरकार जो है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार

0: और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
1: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज वन की शुरुआत की जा रही है, तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे? क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
0: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है, अगर आप देखें तो 5G और

0: इसी में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं, जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांवों की हम बात करते हैं। तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218,
1: जी
0: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था, लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था।

0: तो गांवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गांव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3,580 के लिए प्रयास कर रही है और इसी साल में 75 इसी तरह के गांव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं।
1: जी, थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
0: हमने सतनावरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था। 4G प्राइवेट नेटवर्क सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सैटेलाइट में हमारे ही कुछ पेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े,
1: जी
0: उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच

0: चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news.

व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। नए हमलों से अन्य देशों के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी केंद्र और रक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि केशन द्वीप पर हुए हमले में

के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पूर्वी कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कांगो सरकार के अनुसार लगभग एक सप्ताह में मरने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि इबोला अधिक तेजी से फैल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तक इस प्रकोप में 3,442 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,521 लोगों की मौत हो चुकी है।

रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। नीरज पांचवें जबकि रोहित और यशवीर नौवें और दसवें स्थान पर रहे। वहीं प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। चित्रावेल ने दूसरा, सिल्वा प्रभु ने तीसरा स्थान हासिल किया। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरप, तानिया हेमंत और राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। जबकि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एचएस प्रणव हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला वर्ष 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अमानवीय कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। जापान के कुमामोटो

बातें होती हैं और दिल की बातें होती हैं। सिर्फ बातें ही नहीं, गीतों के माध्यम से भी आप बहुत सी बातें अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब आपने मुझे नहीं देखा और मैंने आपको नहीं देखा, तो चलिए आज का ये गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का हर श्रृंगार आपके साथ है अर्पना। 10:31:50 हो चुके हैं। आज के हर श्रृंगार में आप सभी का स्वागत करती हूँ।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

कविता कृष्णमूर्ति की और नितिन मुकेश की आवाज में ईश्वर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार में हसरत तो थी कि उनसे ख्वाबों में मुलाकात हो जाती, मगर वो तो अपने साथ हमारी नींद ही उड़ा कर ले गए। दोस्तों, वो तो बेशक आपकी नींद उड़ा कर ले गए होंगे, लेकिन जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि रेडियो ऐसा माध्यम है जिसमें बेशक हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बातों के जरिए या गीतों के जरिए हम एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट। पुनः प्रसारण के बाद ठीक 11:40 पर मैं अर्पणा आपके साथ एक बार फिर से रहूंगी लेकर हाजिर गीत मेरे मनमीत। फिलहाल आप इस गीत का आनंद लीजिए और 11:00 समाचार जरूर

बात करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को

0: their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,317 पर बंद हुआ. हालांकि विस्तृत बाजारों में गिरावट देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ. स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.6% की गिरावट आई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक एक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मॉडेस्ट गेन्स.

बाजार जो है बहुत ही एक मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग मोड़ पर अभी खड़ा है। कई कई प्रकार के फोर्सेस इस वक्त शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो कंपनी जगत के नतीजे आए हैं, कंपनियों के नतीजे आए हैं, वो कुछ उम्मीद से बेहतर हैं। कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं थोड़ा गिरावट है, लेकिन करीब करीब वो अच्छे प्रदर्शन है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के। हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहां हम बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं। जो एक एआई ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेड था, जिससे जापान, कोरिया, और ताइवान जैसी मार्केट्स में बहुत बड़ी तेजी चल रही थी, वहां अचानक बहुत गिरावट आ रही है, तो उसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर पड़ता है। एफआईआई के रुख पर उस पर प्रभाव पड़ता है, और साथ में तो ये जो वेस्ट एशिया में आप वॉर का माहौल देख रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। कुल मिलाकर यदि मैं ये सब मिलाता हूं, और ये सब बड़े फैक्टर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे फैक्टर्स नहीं है, इससे बाजारों पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो हमारा प्रदर्शन भारत का अच्छा रहा है, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, क्योंकि आईटी क्षेत्र की कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वहां पर हमने बहुत भारी गिरावट देखी थी पिछले दिनों। कुछ अब हमने पिछले यदि एक या दो सप्ताह को देखें वहां बाइंग हुई है, और 15-20% उछाल भी आया है बड़ी आईटी कंपनीज के शेयर्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से काफी बड़े पैमाने पर उन्होंने पैसा निकाला था, हम वहां पर थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। वहां पर एफआईआई के द्वारा बाइंग दोबारा से शुरू हुई है, अभी लार्ज कैप्स में कर रहे हैं, लार्जली आईटी स्टॉक।

0: This crude oil prices are a big challenge for India, and I don't see them going down in the near future. I think they will stay high given the political nature of this right now.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सोने की मांग वार्षिक आधार पर 6% घटकर 131 टन के आसपास आ गई. विश्व स्वर्ण परिषद की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है. देश में इस दौरान स्वर्ण आभूषण की मांग 15% घटकर 75.1

0: इम्पोर्ट कम कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट करी, मुझे लगता है बहुत बड़ी सेविंग्स होगी हमारे लिए। वो ट्रेंड चल भी रहा है तो वो अच्छा एक पॉजिटिव ट्रेंड है।
1: Moving on to the bullion market, in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.4% up at 1,43,340 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% up at 2,19,580 rupees per kilogram a short while ago.
2: Haiye aapko liye chale MCX wahan August anubandh wala sona 0.5% se

0: prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं। वक्त हो गया है 11:41 तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे गीत के साथ। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत होगा। फिल्म का नाम है वो 7 दिन। स्वागत है आप सभी का।

आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। गीत के बोल संतोष आनंद के लिखे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है प्यासा सावन। ग्यारह बजकर 51 मिनट और 9 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

11:55 और 14 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा जी की आवाज में। शहरयार के लिखे बोल हैं, खयाम का संगीत है, फिल्म का नाम है उमराव जान। इसी गीत के साथ गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार।

0: परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, अंदर वो नफरतें थी कि बाहर के हो गए। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गैर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास के पत्थर भी पिघल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पर आंखों से निकल जाते हैं। तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से

पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। और चलिए आगाज करते हैं कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने के साथ। रफी साहब और आशा भोसले की बेहद खूबसूरत आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है। मिले कोई भी तेरा जिक्र छेड़ देते हैं, कि जैसे सारा जहां राजदार अपना है। तू पास भी हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है।

सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि उसमें मिलने वाला दर्द भी अपना सा लगने लगता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने की नहीं बल्कि उम्र भर महसूस करने की चाह होती है। जी हाँ, जब रात में खामोशी आ जाती है और ऐसे में दिल बस उसी एहसास को फिर से जीना चाहता है, उस एहसास को जिसने कभी मुस्कुराना सिखाया था और कभी तड़पना भी। शायद इसी मीठी तड़प का नाम इश्क है। तो चलिए सुनते हैं इस दर्द और इस मीठी कसक और तड़प को अपनी हसीन

तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा न मान मेरा। कुछ रोशनी शहर को मिली, तू जान है मेरी जहान मेरा। तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा ना मान मेरा।

0: विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा।

रात सुरमई प्रोग्राम में चलिए अब आगे आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी का

इससे पहले कि बेवफा हो जाए, इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी फराज, बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करे लोग जब खुदा हो जाए। इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाए।

0: और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग देश के

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आपका प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम हमराही में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ रातें सिर्फ चांदनी की नहीं, यादों और एहसास की भी होती हैं। ऐसी रातें दिल के सबसे खूबसूरत ख्वाबों का संजो कर रखती हैं।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। छोड़ के जा रहे हो एक बहुत ही प्यार से गीत के साथ, मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, गत दो दिन संसद

एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है अरुणिमा। जी हाँ, स्वागत करती हूँ आप सबका। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म राजपूत से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म दूरियां से, भुवेंद्र सिंह और अनुराधा पोडवाल की आवाज में। संगीतकार जयदेव, गीतकार सुदर्शन फाकिर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार आरटी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।

0: अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार आरटी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित

और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान की कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

अपने दिल की सच्ची पुकार को सुनिए। सपनों की ओर बढ़ाया गया हर छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल का रास्ता बन जाता है।